0: संचालन हुई रहल विपद पूर्व तयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
1: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्दन त सधैँ बाघ झैँ।

0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब परसलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तभी इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बहा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: सूचना समाचार अनि मनोरंजन को साथ ही रेडियो।

आगे आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

मैं इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू माई लव क्या जाने, लंदन से अमरीका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या ना माने और डी

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोर्सालिक बाघ सम्झोट आम्मिन्द लक्ती र हडबरा पानी बस्दा बेर अस्ति चिमचाम कहाँ रहेछ जाए त सोचो त लट्ठी ठिक्कन घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हा त धन्न ब्यालम्ब ढिकुम से सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिलहाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरहल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेन्स सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के सम्पर्क विवरण तक सूची बनाई एकचोटे प्रयोग के लाग झटपट झोला तयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

0: असौ साल त ढुक्क नारे बत्ती
1: हा त पोर्सालिक बात सम्झोट आम हिन्डो लक्टी र हटबरा पानी बस्दा बेर अस्तिम कहाँ र सिक्दा सोचो त लट्ठी चिपकम घर दान दान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हा त धन्न ब्यालम्ब टिकटिकम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारे बत्ती
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालम बहिने ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिले हा सावधानी अपनाए लड्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एकचोट्य प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: यो हो तपाईको आफ्नै रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हाँ त पोर्सालिक बाट सम्झोट आम हिन्दो लक्टी रहट बरा पानी बस्छ बेर अस्म कहाँ र सिक्दा त सोचो त लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम्बिकुम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारे बट्टी
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिन ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: यो हो रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज़।